0: अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान पाता है। जिम्मेदारी उठाने से मत डरिए, क्योंकि यही आपको मजबूत, भरोसेमंद और सफल बनाती है।
1: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।

0: सोनाली जलोटा की गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें लोबिया की खेती के संदर्भ में। लोबिया की खेती हमारे इन द्वीपों की जलवायु में पूरे साल आसानी से की जा सकती है, चाहे बारिश का मौसम हो या फिर सूखे का। द्वीप समूह में जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए लोबिया वेजिटेबल मीट का काम करती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावे लोबिया में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायमीन, रिबोफ्लाविन तथा विटामिन सी आदि भी पाए जाते हैं। फसल चक्र अपनाने में लोबिया का महत्वपूर्ण योगदान है तथा खेत की उर्वरकता को बढ़ाने में भी इसकी भागीदारी रहती है। ये फसल हरी खाद का भी काम करती है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को रूट नोड्यूल्स द्वारा पौधों को प्रदान करती है, जो कि रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम कर

0: या उनके खरीदने के बिल को कम करने में मदद करती है। हरी फलियां सब्जियों के काम आती है और सूखे दाने स्वादिष्ट दाल में तथा हरा चारा पशुओं के काम आता है। हमारे इन द्वीपों में लोबिया की अरका गरिमा, क्रीपर लॉन्ग, सेलेक्शन 2-6-3, पूसा दो फसली, पूसा कोमल, पूसा बरसाती, पूसा फाल्गुनी आदि किस्मों को हम आसानी से उगा सकते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मिट्टी और जलवायु का सवाल है, गर्म आर्द्र जलवायु इसके लिए बहुत अच्छी होती है जो कि हमारे इन द्वीपों में पाई जाती है। जल निकास युक्त कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी का हमें चयन करना चाहिए। बीज की मात्रा जातियों तथा दूरी के ऊपर निर्भर करती है, फिर भी औसतन 18 से 20 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। बोने से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करा लिया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि इससे पैदावार बढ़ जाती है। किसान भाइयों, खेत को अच्छी तरह से खोदकर या जोतकर तैयार कर लेना चाहिए और 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद को बीज बोने से पहले ही मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। पौधों की दूरी सुविधा अनुसार रखनी चाहिए, फिर भी लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जा सकता है। बहुत लंबे समय तक अगर सूखे का मौसम है तो सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। गोबर की खाद के अलावा यदि उर्वरक उपलब्ध हैं तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जब जब खेत में खरपतवार नजर आए उनको तुरंत निकाल देना चाहिए और बोने के करीब 25 दिन बाद गुड़ाई करके हल्का सा मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। लोबिया की फसल में अगर आप वृद्धि नियामकों यानी पादप हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं तो इससे भी फायदा होगा। 50 से 200 ppm मैलिक हाइड्राजाइड फूल आने से तुरंत पहले अगर छिड़काव करें तो इससे फलियों की पैदावार में वृद्धि होती है। इसी तरह IBA का 250 मिलीग्राम 1 लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से भी पैदावार में वृद्धि देखी गई है। समय समय पर पौध सुरक्षा के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि लोबिया में बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों का भी प्रकोप होता है। जहाँ तक हो सके कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम करें और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी समन्वित कीट नियंत्रण पर ज़्यादा जोर दें। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल

0: उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher

0: श्रीविजयपुरम लौटेगा। जलयान नालंदा लिटिल अंडमान के लिए आज सुबह 9 बजे श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर शनिवार 22 तारीख को प्रातः 7 बजे श्रीविजयपुरम से जाएगा। ये जलयान रविवार 23 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी कैम्बलवे नानकौरी होते हुए कैम्बलवे की यात्रा पर मंगलवार 25 तारीख को सुबह 9 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 27 तारीख को प्रातः 8 बजे कैम्बलवे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से जाएगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से। एमवी बारटान शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान परसों मंगलवार 18 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। श्रोताओं, आज का हमारा शीर्षक है दुनिया। जिंदगी का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि दुनिया कभी एक जैसी नहीं होती। हर इंसान अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने एहसासों के रंगों से इसे देखता है। किसी के लिए यही दुनिया उम्मीदों का घर है, किसी के लिए सवालों का समंदर। कोई इसमें खुशियां तलाश लेता है तो कोई शिकायतें। कभी कभी मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर इस दुनिया की रचना करने वाले ने इसे इतनी अलग अलग रंगों से क्यों सजाया। क्यों यहाँ खुशियों के साथ गम भी है, अपनापन भी है और दूरी भी। शायद इसी तलाश का नाम जिंदगी है।

श्रोताओं, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। हर सीख किताबों से नहीं मिलती, कुछ सबक रिश्तों से मिलते हैं, कुछ अपनों से और कुछ उन अनुभवों से जो हमें भीतर तक बदल देते हैं। कभी किसी का साथ हमें दुनिया पर भरोसा करना सिखाता है, तो कभी कोई अनुभव हमें ये समझा जाता है कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं और कई बार दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया भी बदल जाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इस दुनिया को समझना आसान नहीं। यहाँ हर चेहरे की अपनी कहानी है, हर रिश्ते का अपना रंग है और हर इंसान अपने हिस्से की ज़िंदगी जी रहा है।

लेकिन जिंदगी सिर्फ अनुभवों और सवालों का नाम नहीं है, इसमें खुशियों के भी अनगिनत रंग हैं। कभी दोस्तों की महफिल में, कभी अपनों की हंसी में, तो कभी किसी छोटी सी खुशी में हमें इस दुनिया की खूबसूरती दिखाई दी जाती है। यही दुनिया कभी मेला लगती है, कभी तन्हाई। कोई इसकी चमक में खो जाता है तो कोई इसकी सच्चाई को पहचान लेता है। समझदारी शायद इसी में है कि हम दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने देखने का नज़रिया बदलें, क्योंकि नज़र बदल जाए तो वही दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगती है।

0: तो दोस्तों, दुनिया को किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। ये हर दिन बदलती है, हर पल नया रूप दिखाती है। कभी ये सवाल बनकर सामने आती है, कभी जवाब बनकर, कभी परीक्षा लेती है तो कभी मुस्कुराने की वजह दी जाती है। इसीलिए दुनिया जैसी भी मिले, अपने भीतर उम्मीद, सच्चाई और अच्छे विचारों की रोशनी हमेशा जलाए रखिए, क्योंकि दुनिया को देखने का सबसे सुंदर नज़रिया वही है जिसमें शिकायतों से ज़्यादा शुक्रिया हो। इसी अच्छी सोच और खूबसूरत एहसास के साथ आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी श्री विद्या।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से कार्यक्रम। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 332वीं कड़ी।

लक्ष्मण का बाण सीधा मेघनाथ की छाती में लगा। देह त्याग करने से पहले उस महावीर ने छल कपट का त्याग किया और सच्चे हृदय से श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण किया। हनुमान और अंगद विह्वल स्वर में कह उठे, हे वीर, धन्य है तेरी माता जिसने अपनी कोख में तुझे धारण किया, और धन्य है तू जिसे लक्ष्मण जी के हाथों सद्गति प्राप्त हुई।

हनुमान मेघनाथ का पार्थिव शरीर रावण के महल के द्वार पर रख आए। पुत्र की ये गति देख रावण मूर्छित हो गया। अन्य रानियों सहित मंदोदरी के विलाप से अंतःपुर द्रवित हो गया। बाहर नगर में शोकातुर प्रजाजन रावण को कोस रहे हैं, जिसने अपने अभिमान और हट के कारण लंका को ये दिन दिखाया। लेकिन रावण अपनी स्त्रियों को एक दार्शनिक की भांति उपदेश दे रहा है कि इस जगत के समान ही शरीर भी नाशवान है। रात्रि बीत जाती है। वानर सेना एक बार फिर युद्ध भूमि में आ डटी है। रावण ने पवन गति से दौड़ने वाला अपना रथ सजाया और अपने विश्वस्त योद्धाओं को साथ ले रणभूमि की ओर चल पड़ा। चारों ओर भयानक अपशकुन होने लगे।

अभी आप रामचरित मानस गान की 332वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि समुद्र में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 18 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आनंद लीजिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे चंदन दास, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।

बाल जगत कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गार्गी सिद्धार्थ का गायन प्रसारित किया जाएगा। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स। 11:30 पर गजल कार्यक्रम में सोनाली राठौर, रूप कुमार राठौर, अनुराधा और तलत अजीज को आप सुन पाएंगे। पुराने फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में। मलयालम कार्यक्रम सुनिए 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी ताहिरा सईद। घर संसार कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एल्बम टाइम्स। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे भक्ति गीत। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 12वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 4:30 पर। 4:40 पर बताया जाएगा कार्यक्रमों का विवरण। बहारों की शाम कार्यक्रम का आनंद लीजिए 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में सुनिए पुराने फिल्मी गीत। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संगीत संगिनी कार्यक्रम सुनिए संध्या 6 बजे। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे छोटा नागपुरी लोकगीत। 6:45 पर आप सुन पाएंगे देशगान। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जनसूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चर्चा के बाद होगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में रितोम सरकार का गिटार वादन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि FM 100.9 MHz पर रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: संकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसंभवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन्स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यञ्च वर्धयन्ति।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कं अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे एककोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थानस्य 17 जनपदेषु 260,000,000,000 रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनमपि अन्तर्जालीय माध्यमेनैव करिष्यते। एतदतिरिक्तम् आजीविकोत्सवस्य अन्तर्गतं नवनियुक्तेभ्यः 15,000+ कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि वितरिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् अद्यारभ्य तमिलनाडु राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ चेन्नई चेंगलपट्टु तिरुवरूर तंजावूर नगरेषु विविधेषु शैक्षणिकेषु स्मारकेषु साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य श्रीराधाकृष्णन् चेंगलपट्टु नगरे SMR विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः 22वें दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्वराज्यपालस्य प्रथम पुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परम् उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिलायात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागद निर्मित पाटलचटिका व्यवस्थायाः अवधि अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बसयात्रायै महिलाः DTC अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बसयानेषु कागद निर्मित पाटलचटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारं आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्तराज्यामेरिका पर्यन्तं 45 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 दिनांकपर्यन्तं सामान्यजनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् उद्यानं प्रातः 10 सायं 6 उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं 5 पर्यन्तमेव भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में छुटपुट वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम तापमान 27.5

0: 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 30.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:38। मौसम की जानकारी के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati.

0: ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप आनंद ले सकेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे चंदन दास, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। तत्पश्चात बाल जगत कार्यक्रम का आनंद लीजिए सुबह 9:00।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, बस कुछ ही पलों बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। देश के साथ द्वीपों के विभिन्न भागों में भी कल 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना से मनाया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ग्राम पंचायत गोविंद नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क का एक वर्ष का अग्रिम भुगतान करने के लिए पुरस्कार आधारित पहल शुरू की गई है। और अंडमान निकोबार स्टेट ओपन चेस चैंपियनशिप 11 सितंबर से आयोजित की जाएगी। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। कल पूरे देश के साथ द्वीपों के विभिन्न भागों में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने मुख्यालय सहित क्षेत्रीय केंद्र मिनीकॉय तथा तीनों जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में स्वतंत्रता दिवस मनाया। संस्थान के निदेशक डॉ. जयसुंदर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में डॉ. जयसुंदर ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए पिछले 8 दशकों में कृषि परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका पर प्रकाश डाला। डिगलीपुर में स्वतंत्रता दिवस पूरे देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष अलगर स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

उन्होंने विवेकानंद स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए द्वीपों तथा राष्ट्र की प्रगति एवं कल्याण के प्रति सभी के सामूहिक उत्तरदायित्व पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने उप जिला अस्पताल डिगलीपुर का दौरा कर मरीजों को फल वितरित किए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र परिसर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग में भी स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के तहत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। यह योजना आज से लागू हो गई है। इसके तहत घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकेगी। यह एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। आयकर विभाग ने योजना को समझने में करदाताओं की मदद के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी जारी किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि अनंतिम उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शतरंज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कैम्बल बे के ग्राम पंचायत गोविंद नगर के प्रधान जी वेंकट राव के नेतृत्व में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क का एक वर्ष का अग्रिम भुगतान करने के लिए पुरस्कार आधारित पहल शुरू की गई है। यह पहल कल से उपयोगकर्ता शुल्क के समय पर भुगतान को बढ़ावा देने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने और अधिक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस अवसर पर क्षेत्र के सहायक आयुक्त शिवम ताशी धावा ने अपने संबोधन में परिवारों से आग्रह किया कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लें और क्षेत्र को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। उन्होंने इस पहल में भाग लेने वाले परिवारों को पुरस्कृत किया। ग्राम पंचायत प्रधान ने कहा कि पंचायत लगभग 70% परिवारों को अग्रिम उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान प्रणाली के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तकनीकी सहयोग से योजना से कार्रवाई तक अस्पताल की तैयारी, सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करना विषय पर एनिम्स में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कल और 18 अगस्त को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में जीबी पंत अस्पताल एनिम्स के डॉक्टरों, सहायक प्रोफेसरों, अस्पताल प्रबंधकों और नर्सिंग अधिकारियों के लिए रखा गया है। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की ओर से अंडमान निकोबार स्टेट ओपन चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर तक रांची बस्ती स्थित सीपीडब्ल्यूडी के बहुउद्देश्य सभागार में आयोजित होगी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में स्विस प्रणाली के तहत कुल 9 राउंड खेले जाएंगे। विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक खिलाड़ी प्रवेश शुल्क के साथ 26 अगस्त तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हज समिति ने हज 2027 के लिए प्रशिक्षकों के चयन हेतु पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार हज समिति की वेबसाइट पर 11 से 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे। आवेदक का पिछले वर्ष 5 वर्षों में हज किया होना आवश्यक है। इसके साथ ही उसे अंग्रेजी,

उर्दू, हिंदी या किसी स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विषयों के कुल 4 पदों पर भर्ती के लिए अतिथि प्रवक्ताओं का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके लिए 19 अगस्त सुबह 10 बजे से कॉलेज प्राचार्य के कक्ष में सीधे साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप और दिशा निर्देश कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा कॉलेज के सूचना पट पर भी दर्शा दिया गया है। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित रहने को कहा गया है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए योग्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत नए और नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनाओं के तहत सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि द्वीप समूह के सभी अनुसूचित जनजाति छात्र बिना किसी आय सीमा के इस योजना के पात्र है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का आधार विवरण उनके वर्तमान बैंक खाते और पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक और अपडेटेड होना चाहिए। सहायता के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों के अलावा जनजातीय कल्याण निदेशालय में भी एक समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें रिक्त पड़ी है। इन रिक्त पड़े सीटों पर प्रवेश के लिए कॉलेज सीधे प्रवेश 19 अगस्त को सुबह 9 बजे से आयोजित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के साथ द्वीपों के विभिन्न भागों में भी कल 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ग्राम पंचायत गोविंदनगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क का 1 वर्ष का अग्रिम भुगतान करने के लिए पुरस्कार आधारित पहल शुरू की गई है। और अंडमान निकोबार स्टेट ओपन चेस चैंपियनशिप 11 सितंबर से आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम देश रागिनी।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का देश रागिनी कार्यक्रम में। दोस्तों, आसमां में लहराता तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं है, बल्कि हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग हमें साहस और त्याग की प्रेरणा देता है। सफ़ेद रंग हमें शांति और सत्य का संदेश देता है और हरा रंग हमें समृद्धि और विकास की राह दिखाता है। इन तीनों रंगों को अपने भीतर समेटे हमारा तिरंगा हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारा देश सर्वप्रथम है।

दोस्तों, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की मिट्टी की खुशबू में अपनापन है, उम्मीदों से भरा आसमां है, हर मौसम खुशियों का रंग लेकर आती है, खेतों में हरियाली मुस्कुराती है, नदियाँ प्रेम के गीत गाती है, पहाड़ वीरता की कहानी बयां करते हैं। अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद हमारा दिल एक है और एक ही नाम इसमें बसता है, वो है भारत।

दोस्तों, देशभक्ति का एहसास हमारे दिल की धड़कनों में बसता है। हमारे देश की मिट्टी की खुशबू हमें हमारी पहचान का एहसास कराती है। हम कहीं भी क्यों ना रहे, कितनी दूर भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन अपने वतन की मिट्टी से हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अपने देश से प्रेम है हमें। हमको यहीं पे जीना है, हमको यहीं पे मरना है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का सूर्योदय जल्दी होता है तो किसी का थोड़ा देर से, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी का जीवन कम सुंदर है। अपने रास्ते पर विश्वास रखिए, अपनी गति से आगे बढ़ते रहिए और हर दिन अपने कल को आज से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए।

जसलीन रॉयल और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था डियर जिंदगी फिल्म से, बोल कौसर मुनीर के, धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। कार्यक्रम में अब सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को फिल्म हम तुम से। पारसून जोशी के लिखे गीत को संगीत सजाया है जतिन ललित ने।

संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था मन फिल्म से। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत रचना समीर की। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा एवं अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ गीत अकेले हम अकेले तुम फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत था उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: शान गायत्री अय्यर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था सलाम नमस्ते फिल्म से। गीतकार थे जयदीप सहानी तथा संगीतकार थे विशाल और शेखर। इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य

तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान

0: मापन करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
4: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
5: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निःशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
6: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अख्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का

0: 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। आईएमडी ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
4: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये था बेखुद का कलाम। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं जलील की लिखी रचना चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज़ों में।

0: सुगम संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: इंडिया ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव इनवाइटिंग क्रिएटर्स टू शोकेस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, वेदर इट्स कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, फेस्टिवल्स, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल हीरोज और हिडन डेस्टिनेशंस। योर स्टोरी मैटर्स। क्रिएट अ 1 to 3 minute वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट और व्लॉग एंड अपलोड इट ऑन द माई वेव्स प्लेटफॉर्म। एंट्रीज विल बी जज्ड ऑन ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, टेक्निकल क्वालिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। एक्साइटिंग प्राइजेस अवेट। 50,000 rupees एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, 2 lakh rupees एट द यूटी लेवल एंड 5 lakh rupees एट द नेशनल लेवल। सेलिब्रेट योर रूट्स, इंस्पायर द नेशन। जेम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं चंदन दास की गाई गजल पयाम सईदी की रचना में।

0: चंदन दास की आवाज़ में ये था इसरार अंसारी का कलाम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और चंदन दास की गाई चंद गज़लों का लुत्फ ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल जगत, पर पहले ये संदेश।
1: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।

नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियो तरंगों के इस खास सफर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रीता दीदी। आज के बाल जगत कार्यक्रम में एक बेहद खास और प्यारे दिन की कहानी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। जी हाँ, सद्भावना दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में नफरत से ज्यादा ताकतवर सिर्फ और सिर्फ प्यार और भाईचारा है। हम सब मिलकर इस दिन को रहने के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और खुशहाल जगह बना सकते हैं। इसीलिए अपने रेडियो के पास रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम। तो बच्चों, सबसे पहले यह जानते हैं कि यह सद्भावना दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त को हमारे देश में यह दिन पूर्व प्रधान

प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वे युवकों की बात करते थे, देश को आगे ले जाने के आधुनिक सपने की बात करते थे और सबसे बढ़कर वे हमेशा शांति और एकता के पक्षधर रहे थे। सद्भावना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अच्छा और भावना, यानी कि सबके प्रति अच्छे विचार रखना ही सद्भावना है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास चाहे कोई किसी भी राज्य में हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो या किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हम सब एक ही परिवार की तरह हैं। जब हम बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की मदद करते हैं तो यही असली सद्भावना कहलाती है। दोस्तों, स्कूल में जब कोई नया छात्र आता है या किसी से खेल खेल में अनबन हो जाती है तो हम ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहते, हम सॉरी बोल देते हैं, हम हाथ मिलाते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं, है ना? हम अपना टिफिन भी उनके साथ बांटते हैं, क्योंकि दोस्त तो आखिर दोस्त ही।

यही कि जब हम सब मिलकर खेलते हैं और किसी को अकेला नहीं छोड़ते तो बहुत अच्छा लगता है ना। लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलता, प्यार से सब कुछ मिल जाता है ना दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे ये नन्हे साथी कितनी आसानी से बड़ी बड़ी बातें सीख जाते हैं कि मिलजुल कर रहना ही असली मजा है। आइए अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और जानते हैं अच्छी अच्छी बातें। एक बार एक पार्क में अमित और रोहन नाम के दो पक्के दोस्त खेल रहे थे। खेलते खेलते अमित की गेंद रोहन के पास चली गई और रोहन ने उसे वापस देने से मना कर दिया। दोनों में बहस होने लगी कि ये गेंद मेरी है। तभी पार्क के एक बुजुर्ग अंकल आए और प्यार से बोली, अरे बच्चों, लड़ने से गेंद तुम्हारी थोड़ी ना हो जाएगी। अगर मिलकर खेलोगे तो दोनों को खेलने का मौका मिल जाएगा। अमित और रोहन को बात समझ आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी गलती

पानी गले मिले और दोनों फिर उस गेंद से खेलने लगे। इस छोटी सी घटना से हमें यह सीखने को मिलती है कि अहंकार और जिद छोड़ देने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, इस प्यारे से सफर को थोड़ा और संगीतमय बनाते हैं। आइए सुनते हैं एकता और सद्भावना पर एक छोटी सी प्रेरणादायक कविता। जात पात का भेद मिटाए, दिल में प्यार का दीप जलाए, हाथ से हाथ मिलाते चलो, देश की शान बढ़ाते चलो, कोई ना छोटा कोई ना बड़ा, प्यार से हर दिल को है जोड़ा, भेदभाव की दीवार गिराकर सबको गले से तुम अपनाओ। सचमुच जब हम दिल से सबको अपना लेते हैं तो जीवन संगीत की तरह खूबसूरत हो जाता है।

0: नन्हे दोस्तों, यादों का सुनहरा सफर होता है गीत। गीतों के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: नन्हे दोस्तों, क्या आपने कभी रात के समय साफ आसमान की ओर देखा है? वो अनगिनत टिमटिमाते तारे, चमकता हुआ चांद और गहरी काली चादर जैसी यह रात हमें हमेशा से अपनी ओर खींचती आई है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां ना कोई सड़क है, ना कोई गुरुत्वाकर्षण और ना ही समय की कोई साधारण सीमा। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष यानी वह अनंत ब्रह्मांड जो हमारी कल्पनाओं से भी बहुत बड़ा है। दोस्तों, खगोलीय दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्यों, ग्रहों, तारों और इंसानी खोजों के बारे में जानते हैं जो आपका सिर चकरा देने के साथ साथ आपको हैरान भी कर देने वाली है। दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा एक छोटा सा ठिकाना है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। इसके केंद्र में है एक चमकता हुआ विशाल तारा, हमारा सूर्य, जो हम सबको ऊर्जा देता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते

आठ अद्भुत ग्रह। सबसे पहला है बुध, फिर चमकता हुआ शुक्र और फिर हमारा नीला और प्यारा सा पृथ्वी जहाँ जीवन पनपा है। इसके आगे लाल ग्रह मंगल है, जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी है कि क्या वहाँ कभी जीवन था। फिर आते हैं विशालकाय गैस के गोले बृहस्पति और शनि, जिनके चारों ओर सुंदर छाले हैं, और अंत में यूरेनस जैसे ठंडे और दूर दराज के ग्रह। सोचिए दोस्तों, यह पूरा सौरमंडल हमारे इस विशाल ग्लेशियर का एक छोटा सा हिस्सा भरा है। सौरमंडल से बाहर निकलकर जब हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं तो हमें अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं दिखाई देती है। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, जिनमें अरबों खरबों तारे हैं। तारे हमेशा के लिए नहीं रहते, इनका जन्म बादलों और गैसों के विशाल भंडारों में होता है। ये करोड़ों साल चमकते हैं। और हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष का सबसे बड़ा रहस्य क्या है जानना चाहोगे? वह है ब्लैक होल। यह अंतरिक्ष का वह हिस्सा है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता। जो इसके अंदर गया वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों, है ना या किसी विज्ञान फिक्शन फिल्म जैसी रोमांचक बात। इंसान हमेशा से जिज्ञासु रहा है, उसने चांद पर कदम रखे, मंगल ग्रह पर अपने रोवर भेजे और अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी दूरबीन स्थापित की ताकि ब्रह्मांड की शुरुआत को देख सके। इस अंतरिक्ष दौड़ में हमारे देश भारत ने भी इतिहास रचे हैं। हमारे अंतरिक्ष संगठन इसरो ने कम लागत में मंगलयान भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ चंद्रमा के दक्षिण

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा

0: प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष सिर्फ तारों और यहाँ का अध्ययन नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारी जिज्ञासा कितनी बड़ी। जब हम अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों को देखते हैं तो हमारी सारी छोटी मोटी सीमाएं और दूरियां मिट जाती हैं। इसीलिए अपनी आंखों में सपने रखिए और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखिए। कौन जानता है, कल आप में से ही कोई वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री या अंतरिक्ष यात्री बनकर इस ब्रह्मांड के और नए रहस्य से पर्दा उठाए।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: नन्हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं और इसका मतलब क्या होता है? आइए जल्दी से जानते हैं। सबसे पहला है केसरी रंग, जो हमें हिम्मत और देश के लिए बलिदान देने की सीख देता है। बीच में है सफेद रंग, जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और नीचे है हरा रंग, जो हमें हरियाली, खुशहाली का संदेश देता है। और हाँ दोस्तों, बीच में जो नीले रंग का चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं, जिनमें 24 तिल्लियां हैं जो कहती हैं, रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। तो हमारे नन्ही दोस्तों, आपको करना क्या है, अपने मम्मी पापा की मदद से अपने घर की छत पर या बालकनी पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा झंडा फहराना है। और हाँ, तिरंगे के साथ एक प्यारी सी सेल्फी खींचकर अपने बड़ों की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी करें, जिससे आपको एक सुंदर डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। याद रखिए बच्चों, झंडा हमारा गौरव है, यह कभी भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए और इसका पूरा सम्मान करना चाहिए। हर घर तिरंगे के अभियान को सफल बनाएं।

प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। आज से यह पक्का कीजिए कि आप अपने जीवन में सद्भावना की इस रोशनी को हमेशा जलाए रखेंगे। फिर मुलाकात होगी कुछ नया सीखने और सुनने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चारों तरफ प्यार फैलाते रहिए।

श्रोताओं, अभी आप बाल जगत कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको गार्गी सिद्धांत और विश्वनाथ शिखंडे का गायन सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में पहले सुनिए गार्गी सिद्धांत का गायन। इनके साथ तबले पर पीके चटर्जी ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए गार्गी सिद्धांत का गाया राग अहिर भैरव। बोल है मोहन मधुर आज मुरली बजाओ।

0: शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं विश्वनाथ शिखंडे का गायन। इनके साथ PK चटर्जी ने तबले पर, शक्तिपदा नाग ने हारमोनियम पर और KK अतिकेश्वर ने तानपुरे पर संगति की है। तो लीजिए सुनिए विश्वनाथ शिखंडे का गाया राग अहिर भैरव में ख्याल।

0: शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप गार्गी सिद्धांत और विश्वनाथ श्रीखंडे का गायन सुन रहे थे।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, आपकी आवाज़, आपकी पसंद और आपके पसंदीदा गीतों की सुरीली फरमाइशों के साथ हम फिर उपस्थित हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। दोस्तों, हर फरमाइश के पीछे होती है एक प्यारी सी धुन, कुछ पुरानी यादें और किसी खास के लिए एक प्यारा सा संदेश। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, हमसे जुड़िए अपने गीतों के साथ। तो हमारे नंबर्स हैं 232-540 एंड 232-558। आपकी फरमाइशी गीत सीधे आपके दिलों तक। तो इस महफिल में आपका दिल से स्वागत है और मैं हूँ आपकी रेडियो दो शाहिना। तो चलिए आज के पहली फरमाइश के साथ शुरू करते हैं प्रोग्राम को। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, नमस्कार जी। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप थोड़ा ज़ोर से बोलें। हेलो हेलो हेलो, जी सुना जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हेलो, हाँ जी बताइए, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मध्य प्रदेश से महार

ओके सॉरी, महाराष्ट्र से। तो बताइए कैसी हैं आप, कैसी हैं आप? हाँ जी मैं भी अच्छी हूँ। तो बताइए आज के इस प्रोग्राम में कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहती हैं? ओके तो कॉल करने

0: हाँ डीटीएच तो सुन रहा हूँ मैडम आपका प्रोग्राम।
1: ओके ओके,
0: हाँ
1: तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: ओके ओके, थैंक यू, है ना,
1: ओके।
0: शुक्रिया।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते। ग्राम
0: नमस्ते।
1: सुराना, जिला रतलाम, एमपी से शेख हैदर खान बोल रहे हो?
0: शेख हैदर
1: हैदर खान?
0: खान जी, शेख हैदर खान जी, कैसे हैं आप और क्या करते हैं?
1: बस बढ़िया है मैडम, खैरियत में है। बस खेती बाड़ी का काम है मैडम।
0: अच्छा, तो आज के इस प्रोग्राम में वो कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: ये रफी साहब और लता जी का आज में गीत, फिल्म आप आए बहार आई का, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।
0: ओके, तो ये
1: और मेरे परिवार के लोग है, शकीला बानो है, शमीम बानो है, मुस्कान और भूरी है।
0: इन सब के साथ आप सुनना चाहते हैं?

0: हेलो, फरमाइश
1: जी मैम। जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम शिवालीघाट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता। मैम सॉरी पर वी आर लेट, पर आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी टीम को और सभी सुनने वालों को।
0: जी आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं।
1: और मैम कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी। और बताइए आपका नाम बताइए।
1: शिवा लोहट MP विदिशा से।
0: ओके शिवा लोहट जी, बताइए आज के प्रोग्राम में कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम देखिए एक गाना रहेगा, मूवी का नाम है बीरजारा, उसमें एक गाना है धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला।
0: जी जी
1: ऐसा देते है मेरा।
0: ओके बहुत ही प्यारा सा गीत है
1: जी। धन्यवाद मैम।
0: तो आप ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: हमारे परम प्रिय मित्र आएंगे पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, रमेश प्रजापति जी, रमेश पात्रे जी, अमल जी, विमल जी, भगवान सिंह परमार जी, अविनाश जी और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आपके लिए डेडिकेट रहेगा मैम ये गाना।
0: ओके जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिए बीरजारा फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।
1: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।

0: हेलो, फरमाइश
1: हेलो फरमाइश।
0: जी।
1: नमस्कार बहन जी,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: कौन बोल रही हैं?
1: जिला चंदेल बोल रहा हूँ, जिला

0: ना मध्य प्रदेश से आपका भाई,
1: अच्छा भाई का नाम
0: मांगीलाल चंदेल
1: मांगीलाल चंदेल जी, कैसे हैं आप?
0: जी। बस बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ, और
1: ओके।
0: मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे।
1: और मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो बताइए मंगेली लाल जी, आज क्या गीत सुनाएंगे आप?
0: बहन जी, मुझे कुछ ऐसा ही एक गाना याद आ रहा है, क्योंकि सावन का तो महीना है,
1: जी
0: और इस गाने में कुछ पुरानी यादें छुपी हुई हैं,
1: उनको ताजा करना है।
0: उनको ताजा करना है आपको। और कहा, और फिल्म का नाम तो बंदनी है,
1: जी
0: और गीत के बोल हैं, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन
1: ओहो बहुत प्यारा।
0: में लीजो बुलाए रे।
1: ओहो, तो मांगीलाल जी
0: जी
1: बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत पुराना
0: जी
1: है शायद से। चलिए
0: हाँ, बहुत पुराना
1: हाँ,
0: है।
1: आपके जरिए हम भी आनंद लेते हैं इस गीत का।
0: जी सबई लेंगे बहन जी, सबई लेंगे
1: हाँ
0: आनंद
1: नहीं,
0: का।
1: सभी लेंगे, मगर
0: जी
1: मगर ये गाने
0: जी
1: बहुत, मतलब मैंने तो पहले बार सुना है ये गाना, बहुत मतलब किसी ने
0: हाँ,
1: फरमाइश की
0: पुराना
1: नहीं।
0: है।
1: हाँ जी,
0: हाँ,
1: तो
0: वो कई
1: मांग
0: करते ना, कई
1: हाँ जी,
0: करते
1: तो आप जो
0: आपके।
1: है बहुत पुराने पुराने गीतों के शौकीन रखते हैं ना। तो चलिए मांगीलाल
0: जी,
1: जी, कॉल करने के लिए
0: और
1: दोस्तों
0: बहन
1: के
0: जी
1: नाम।
0: कुछ
1: हाँ
0: मित्रों
1: जरूर
0: को याद
1: जरूर।
0: करना। नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, शेख हैदर खान जी हैं
1: जी
0: रतलाम से, और
1: जी
0: भगवान सिंह परमार जी हैं, और केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं,
1: जी
0: लोकेन वर्मा जी हैं, साधना प्रसाद जी हैं मथुरा से, राकेश जी हैं शिमला से, और त्रिपुरा से अविनाश जी हैं, और आशुतोष जी हैं, और संगीता बहन जी हैं, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा बहन जी।
1: ओके मांगेलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: ओ सतीश जी, कैसे हैं आप और क्या करते हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आपका रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और 15 अगस्त तो बीत गई है, तो 15 अगस्त
0: अच्छा,
1: का भी
0: आपके
1: तो
0: यहाँ 15 अगस्त कैसे मनाया गया?
1: बहुत धूमधाम से मनाया गया। बूंदी बूंदी मिली थी और बच्चों को साथ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। कविता वविता सुनाई थी तो बहुत अच्छा लगा। 15 अगस्त में
0: अच्छा, तो
1: बताइए,
0: बताइए आज
1: मजा
0: की इस महफिल में वो कौन सा गीत है वो जो आप
1: आया। आप
0: सुनना चाहते हैं?
1: कैसा है श्री विजय मुकरम का मौसम कैसा है?
0: यहाँ का मौसम अच्छा है सर,
1: अच्छा, आपके इधर 15 अगस्त कैसी मनाई गई है? 15 अगस्त
0: बहुत
1: को
0: बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया से मनाई गई
1: हाँ, बच्चों के साथ जाना तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी। बहुत
1: आपके
0: बहुत बहुत सुबह,
1: आप
0: एक तो 15 अगस्त के लिए रात भर नींद नहीं आता क्योंकि कब सुबह जाएंगे, कब तैयार होंगे, कब जाएंगे झंडा फहराएंगे, कब मिठाइयाँ खाएंगे, वो एक रहता है।
1: तो आपने मैडम जी कौन से कौन सी मिठाई खाई है? लड्डू वाली खाई कि छेना वाली खाई है?
0: सभी, हाँ लड्डू लड्डू जलेबी सभी खाइए।
1: अच्छा, आप आ जाइए, आपको मैं बूंदी वाली खिलाते हैं आपको।
0: ओके ओके सर, थैंक यू। तो बताइए सर,
1: और
0: कौन सा गीत है सर?
1: जो
0: दिल
1: मैडम
0: वाले
1: जो
0: फिल्म जी आपने कहा जी।
1: रच्छा भाव फिल्म का नाम है दिलवाले, गाने बोल था जिसके लिए कल दोस्तों का नाम लेना।
0: हाँ जरूर जरूर,
1: सबसे पहले आपके लिए गाने लेके
0: थैंक
1: चलिए थोड़ा
0: यू।
1: सा। और बे उनको नाम क्या है जो ना विष्णु कुमार भट्टाचार्य जी हैं, और राकेश सिंगला से हैं, और अवनाश हैं त्रिपुरा से। तो अपना अवनाश से बात कर लो मैडम, हेलो करिए अवनाश। हेलो,
0: हेलो
1: मैं बात कर रहा हूँ, हेलो करो।
0: हेलो जी,
1: हेलो
0: हेलो जी, जी सर आवाज़ तो नहीं आ रही है सर, बताइए सर।
1: नमस्कार मैडम जी, कैसे हैं?
0: हाँ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। और आपके इधर मौसम मौसम कैसा
0: हाँ मेरे यहाँ तो मौसम बढ़िया है सर। और अविनाश जी, और जैसा कि आपके
1: है?
0: दोस्त
1: दिल
0: ने फिल्म की
1: जो
0: गाने की फरमाइश की है, दिलवाले फिल्म का जीता था जिसके लिए।
1: मेरे दोस्त ने सतीश ने पसंद की है तो वो ही गाना सुनवा दीजिए।
0: ओके थैंक यू।
1: हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। कॉल पे दो दो बात हो चुकी है तो बहुत अच्छा लग
0: ओके
1: रहा है।
0: ओके, थैंक यू वेरी मच सर।
2: तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
3: सपना, सपना कौन थी? मेरी अपनी, मेरी।
4: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: SBI Premier Banking,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। জীবন এখন বড্ড ফাস্ট, তাই বাড়ি বসে হ্যাসল ফ্রি ব্যাংকিং এর জন্য সুইচ করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং এ,
1: যেখানে আপনি পাবেন ডেডিকেটেড ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ অ্যাসোসিয়েট যিনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাকে স্মার্ট অ্যাডভাইস দেবেন এবং সমস্ত কাজ কমপ্লিট করুন লাইটনিং স্পিডে, অর্থাৎ সিমলেস ব্যাংকিং এক্সপেরিয়েন্স এন্ড মেনি আদার এক্সাইটিং বেনিফিটস।
0: আজই পৌঁছে যান নিজের নিকটবর্তী SBI ব্রাঞ্চে এবং অ্যাক্টিভেট করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং। টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই। লাইফ ইজ মুভিং ইন ফাস্ট মোড, ফর হ্যাসল ফ্রি ব্যাংকিং ফ্রম দ্য কমফোর্ট অফ ইয়োর হোম সুইচ টু SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং,
2: ওয়্যার ইউ গেট ডেডিকেটেড ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ অ্যাসোসিয়েট হু আন্ডারস্ট্যান্ডস ইয়োর নিডস, অফার smart advice and get every task done at lightning speed, giving you seamless banking and many other exciting benefits.
0: Visit your nearest SBI branch today and activate SBI Premier Banking. Terms and conditions apply.
3: Break ke baad aapka punah swagat hai program Hello Farmaish mein. Hello?
4: Hello, namaskar madam.
3: Namaskar.
4: मैडम, मैं गांव लिहदीगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश पवन बात कर रहा हूँ।
3: दिनेश जी, कैसे हैं आप?
4: बड़े हैं मैडम, आप कैसे हैं?
3: मैं भी अच्छी हूँ। और क्या करते हैं आप?
4: बस मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, मोटर वेल्डिंग का।
3: इलेक्ट्रॉनिक का काम? आपके अपने अपना शॉप है?
4: हाँ मैडम, मेरा दुकान है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का, जो ऐसा मान के चलो लाइट वाला बिजली वाला काम सब करता हूँ। ऐसा कूलर फैन जल जाता है, सीलिंग फैन जल जाता है, मोटर जल जाती है, उसकी वायरिंग बनाकर रिपेयर करके देता हूँ।
3: अच्छा, मतलब आप बना के सब देते हैं?
4: हाँ मैडम।
3: तो कैसा ग्राहक आते हैं?
4: आते हैं मैडम। अच्छा। दुकान है अपना तो आते
3: हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मतलब ज्यादा आते हैं कि मतलब ओके फाइन ठीक है थोड़ा बहुत?
4: नहीं, ऐसा नहीं मैडम, सीजन के हिसाब से चलता है। जैसा मान के चलो गर्मी का सीजन ज्यादा होता है उस टाइम ज्यादा चलता है, अभी थोड़ा सीजन बारिश का है तो इस वजह से थोड़ा कम चल रहा है।
3: ओके ओके। तो आप इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है आपका, आप सारे जैसा टीवी हो, फ्रिज हो, बत्ती जो भी है उसको रिपेयर करते हैं, तो साथ साथ गाने भी सुनते हैं?
4: हाँ मैडम, और अच्छा भी लगता है, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं, मजा भी आता है और अपना काम भी चलता है।
3: हाँ ये बहुत तो सही बात है, गाने भी सुनिए और काम भी करिए, कब काम खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना।
4: सही बात है, सही बात।
3: तो बताइए कौन सा गीत आज आपने चुना है?
4: मैडम फिल्म का नाम है क्रोध और गाने के बोले ममता भरे वो दिन, वो गाना सुनना है मुझे।
3: बहुत ही मेलोडियस गाना है आप ये जो चुना है आपने, बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा सा है ना।
4: सही बात है मैडम, अच्छा गाना है।
3: अच्छा गाना, तो मित्रों के नाम लेना चाहेंगे आप?
4: हाँ, सबसे पहले मैडम आपके लिए
3: थैंक यू।
4: उमेश चौहान, आदित्य चौहान, मनीषा चौहान और एक मित्र है सातारा का, उनका नाम है तनुश्री सुरवे, उनके लिए भी डेडिकेशन।
3: ओके, तो दिनेश जी आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: हेलो, सुनाई दे रहा है?
0: जी, मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोलिए।
1: मैं कृपा सिंह बर्मन गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ। कृपा
0: कृपा सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: सिंधु बर्मन
0: कृपा सिंधु बर्मन जी, कैसे हैं आप?
1: ये आ रहे हैं? बहुत अच्छे हैं, मजे में हैं। और आपका कार्यक्रम मैं सुनता हूँ, ये आपका ऐप जो आया है ना, उसमें मतलब उसमें सुनता हूँ।
0: तो कैसे
1: यार
0: लगते हैं
1: आपका
0: हमारे कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम तो जखास है।
0: जखास
1: हाँ
0: है।
1: जी,

0: इतना बहुत फटाफट है आपका कार्यक्रम।
1: ओहो, थैंक यू वेरी वेरी मच।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगता है। आप जब थैंक यू बोलते हैं तो एकदम दिल खुश हो जाता है।
1: ओके, अगेन थैंक यू।
0: जी जी जी जी, धन्यवाद।
1: तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
0: आज सुना दीजिए, गाने का बोल ऐसे है, डफली वाले डफली बाजा, बहुत पुराने फिल्म है मैम।
1: जी जी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: तो अभी अभी मेरा तो 80 हो गया और ये गाना सुनने का लत लग गया है।
1: तो आप गाते भी हैं?
0: नहीं नहीं, गाना सुनना है।
1: नहीं, गाना सुनना है वो मैं सुनवा दूंगी। आप गाते भी हैं?
0: नहीं नहीं, गाने मैं गाना नहीं गाते है, लेकिन 80 हो गया, मैं बुरा हो गया।
1: अच्छा अच्छा, 80 हो गया तो आप बूढ़े हो गए। ओके फाइन।
0: ये और हमारे साथ है, हमारे साथ है कैसी सिंह यादव है, राम बाबू शर्मा है, और है उसका नाम है आपका दिल्ली से एक फोन करता है, एक बुजुर्ग है, नाम क्या है मैं तो भूल ही गया। और हमारे जी वो जो आपका आशुतोष देवनाथ जी है,
1: जी जी,
0: संगीता देव दीदी भाई है, और है हमारे
1: सारे आपके मतलब आपके सारे मित्रों के साथ आप सुनना चाहते हैं?
0: जी, हमारे सारे मित्र है। और यह पूरन वर्मा, जय श्री महाकाल पूरन वर्मा है। और जी जी जी, और है हमारे क्या कश्मीर से, किसका नाम क्या है भूल गया, कि लतीफ भाई के लिए, और है ढेर सारे सुता सुन रहे हैं इस स्पोर्ट ब्लेयर प्रोग्राम सब के लिए। और मैम आप सुनेंगे जरूर, है ना?
1: जी जी
0: जी जी, आपका नाम क्या है मैम?
1: मेरा नाम शाइना है।
0: शाइना, शाइना जी, बहुत अच्छी नाम है आपका।
1: थैंक यू सर कॉल करने के लिए, बहुत बहुत
0: मैम, थैंक यू,
1: थैंक यू वेरी मच। ओके
0: थैंक यू, ओके ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं आशुतोष वर्मा त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। हेलो,
0: हेलो कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं त्रिपुरा से आशुतोष वर्मा बोल रहा हूँ।
0: आशुतोष जी।
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: कौन सा फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: मैम जी, आप मुझे सुना दीजिए। मुझे लिरिक्स संतोष आनंद जी का लिखा हुआ मशहूर एक गाना, फिल्म का नाम है प्यासा सावन,
0: अच्छा, प्यासा सावन।
1: और गाने का बोल है मेघारे मेघारे लता जी, और सुरेश वाडकर जी ने गाया इस गाने को,
0: जी जी जी जी
1: और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सुर से सजा इस गाने।
0: ठीक है आशुतोष जी। अब हमें हमारे पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से मित्रों के नाम ले लीजिए।
1: जी, पहले मैम आपको सुना सुनाना चाहता हूँ। असम से रहते प्रेमोजी जी और अमल बिन भस्मोसारी जी, भाईकर मुंडा जी, रमेश पात्र जी, और सुनेंगे भगवान जी, प्रेम सिंह भैया, रमेश प्रजापति जी, मांगीलाल जी, और नेटवर्क के सारे।
0: ओके ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।

और एफ एम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए हमारा कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स।

श्रोताओं, देश की सरहदों पर तैनात उन वीर जवानों को हमारा सलाम, जो दिन रात देश की हिफाजत में डटे रहते हैं। उनके हौसले, बहादुरी और उनके जज्बे को दिल से सलाम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम सिर्फ गीत नहीं सुनेंगे, बल्कि हर गीतों के साथ समझेंगे कि एक सैनिक की जिंदगी ड्यूटी के दौरान कैसी होती है।

श्रोताओं, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब हमारे देश की सरहद पर कोई जाग रहा होता है। जब हम अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होते हैं, तब कोई जवान अपने परिवार से दूर बर्फीली पहाड़ियों में तपते रेगिस्तान में अपनी ड्यूटी निभाता है। उसके हाथ में सिर्फ हथियार नहीं होता, उसके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है।

श्रोताओं, जरा उस सैनिक के बारे में सोचिए जो सीमा पर खड़ा अपने घर से आने वाले एक संदेश या कॉल की प्रतीक्षा कर रहा होता है। उसे याद आती है माँ की ममता, पिता की चिंता, पत्नी की बातें और बच्चों की वह मासूम आवाज़, क्योंकि सीमा पर तैनात के दौरान उसे केवल बाहरी खतरों का नहीं बल्कि अपने प्रियजनों से दूरी के भावनात्मक संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, एक सैनिक भली भांति जानता है कि उसका कार्य सरल नहीं है, फिर भी उसे पूर्ण विश्वास होता है कि उसके पीछे करोड़ों देशवासी सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

श्रोताओं, जब हमारा सैनिक सरहद पर खड़ा होता है तो उसके लिए सबसे ऊपर होता है देश और देशवासियों की सुरक्षा। जहां आम इंसान के लिए कुछ घंटे रहना भी मुश्किल हो सकता है, कहीं बर्फीले पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान की तपती रेत, तो कहीं घने जंगल और दुर्गम इलाके, लेकिन सैनिक मौसम की कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता है।

श्रोताओं, एक सैनिक की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, वह जिम्मेदारी की पहचान है। उनके कंधों पर सिर्फ रैंक नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब भी हम तिरंगे को लहराते हुए देखें तो उन वीर जवानों को ज़रूर याद करें जो अपने परिवार से दूर रहकर अब हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे सैनिक को सलाम, उनके साहस को सलाम, उनके त्याग को सलाम। उम्मीद है आज का यह कार्यक्रम आपके दिलों को छू गया होगा। देश के जाबाजों को हमारा सलाम। सलाम सोल्जर्स के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। जय हिंद।

तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं रुक कुमार राठौर और सोनाली राठौर की मिलीजुली आवाजों में ये गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनाली राठौर, रूप कुमार राठौर, अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की आवाजों में चंद खूबसूरत गीत और गजल।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम्।

0: हेलो, मैं हूँ एचआईवी वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी एचआईवी जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: శ్రోతలు, ఇప్పుడు వినండి కార్యక్రమంలో చివరిగా తొలి ముద్దు చిత్రం నుండి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం మరియు ఎస్ జానకి వీరిరు కలిసి ఆలపించిన ఈ అలనాటి మేటి గీతం.

0: अभी आप सुन रहे थे तेलुगु कार्यक्रम। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मलयालम कार्यक्रम मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रख रखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से

0: की नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support each challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ताहिरा सईद की आवाज़ में गज़ल। इस समय दोपहर मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए घर संसार कार्यक्रम।

0: नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप सब? ज़रूर व्यस्त होंगी अपने कामकाज में, चाहे रविवार हो या मंगलवार, हम बहनें सदा ही काम में जुटी रहती हैं, है ना? तो चलिए थोड़ा काम को आराम देकर कुछ फुर्सत के पल हमारे साथ भी बिताइए, आपके अपने कार्यक्रम घर संसार के साथ, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी सखी, आपके दोस्त रीमा अरोड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज का सुविचार, जो कहता है कि खामोशी किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं, खामोशी किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। इसलिए बहनों, किसी की चुप्पी को कभी उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, उनकी चुप्पी में छुपे संदेश को समझना चाहिए, जो बिना कहे ही सब कुछ कह जाता है। पर हमारा तो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे तो हमारा रिश्ता ही आवाज़ से है ना? तो चलिए अपने अंक को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ एक विराम लेते हैं।
1: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एक सूचना। क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 तथा राष्ट्रीय स्तर पर ₹5,00,000 तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

0: बहनों, इस गीत के बाद आइए अब अपनी बातों का रुख उस बदलते दौर की ओर करते हैं जो आज के जीवन की सच्चाई है, और वो है परिवर्तन। इस विषय पर अपने जितने विचार व्यक्त किए जाएं उतने कम हैं, और आज इसी विषय पर कवयित्री श्रीदेवी हमारे समक्ष अपने कुछ रचनाएं प्रस्तुत करेंगी। चलिए उनकी रचनाओं को सुनते हैं और महसूस करते हैं।
1: बहनों, आज मैं आपके समक्ष कुछ स्वरचित कविताएं प्रस्तुत करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है परिवर्तन। नया दौर, नई सोच और परिवर्तन। नया दौर, नई सोच और परिवर्तन। कुछ लोग जो अपने से लगते थे, अब बदले बदले से हो गए। जिन रिश्तों में था मधुरस सा मिठास, बदलते समय के साथ भर रहा है खटास। वो दौर था जब परिवारों में अपनापन, प्रेम और होता था सद्भाव। नए दौर में अब बदल रहे हैं परिवारों के हाव भाव। नए दौर में अब बदल रहे हैं परिवारों के हाव भाव। पहले मेल मिलाप, दोस्ती, रिश्ते नाते होते थे हमारे खुशियों के वजह, अब तो हमें लगे ये बेवजह। नया दौर, नई सोच और परिवर्तन। नया दौर, नई सोच और परिवर्तन। वही चौखट, वही आंगन, मगर एहसास बदला है। समय की तेज लहरों में हमारा खास बदला है। बदलाव इस संसार का दस्तूर है। इंसान का बदलना इंसानी फितूर है। सच्चे जज्बातों का मोल मिट सा गया। बदलते संसार में रिश्तों की माला टूट सी गई। चलो मिलकर रिश्तों की माला को फिर से पिरोते हैं। तरक्की की इस अंधी दौड़ में चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। मशीन बनने से पहले चलो फिर से इंसान बन जाते हैं। मशीन बनने से पहले चलो फिर से इंसान बन जाते हैं। बहनों, चाहे कितनी भी परिवर्तन जीवन में हो, लेकिन घर की दहलीज पर जो सुकून मिलता है वह और कहीं नहीं। घर केवल दीवारों से नहीं या सपनों का आधार है। घर केवल दीवारों से नहीं या सपनों का आधार है। जहाँ प्रेम की ज्योति जलती है, वहीं सच्चा परिवार है। माँ की ममता, पिता का साया, जीवन का अनमोल सहारा। भाई बहन की मीठी बातें बन जाती हैं खुशियों का किनारा। सुख आए तो सब मुस्काए, दुख आए तो साथ निभाए। यही सिखाता है घर संसार, प्रेम से जीवन महकाए। ना धन से घर की पहचान, ना ऊंचे महलों का अभिमान। रिश्तों में हो स्नेह और सम्मान, यही है जीवन का सच्चा मान। आओ मिलकर दीप जलाएं, मन में प्रेम का फूल खिलाएं। ऐसा सुंदर हो परिवार, खुशियों से भर जाए संसार। कभी आंगन में हंसी गूंजती थी, हर चेहरा अपना लगता था। छोटी छोटी बातों में भी खुशियों का दीपक जलता था। आज वही घर तो वैसा ही है, पर रिश्तों के रंग बदल गए। अपनों के बीच रहकर भी जाने कितने फासले पल गए। दौलत ने कुछ मन बांट दिए, समय ने कुछ अपने छीन लिए। फिर भी प्रेम की एक किरण हर अंधेरे को जीत लिए। घर सिर्फ ईंटों का नाम नहीं या विश्वास का संसार है। जहां सम्मान और अपनापन हो, वही सच्चा परिवार है। आओ फिर से रिश्ते जोड़े, मन से मन का सेतु बनाएं। प्रेम, दया और विश्वास के संग घर संसार को स्वर्ग बनाएं। प्रेम, दया और विश्वास के संग घर संसार

0: को स्वर्ग बनाएं। बहनों, चाहे कुछ भी हो, रिश्तों सा खूबसूरत एहसास कुछ भी नहीं। एक ऐसी जगह जो लगे सबसे खूबसूरत, जहां मन को मिले सुकून, जहां सुबह की धूप लगे चहकने, जहां शाम लगे मुस्कुराने। एक ऐसी जगह जहां रिश्तों के बुन रहे हो ताने बाने, जहां रिश्तों का आधार होता है प्यार। कुछ ऐसा ही है हमारा घर संसार, हाँ हमारा घर संसार, जहां हम सब पाते हैं प्यार, विश्वास एक दूसरे का साथ, जहां रिश्ते निभाते नहीं बस जिए जाते हैं। माँ का प्यार, बाबा का दुलार, भाई बहनों का साथ, जहां हम झगड़ते भी हैं और मनाते भी हैं, कभी मुस्कुराहट तो कभी गम, जहां एक दूसरे की उपलब्धियों पर हो जाए खुशियों से आंखें नम। हमारा घर हमारा प्यारा सा घर, हमारा घर हमारा प्यारा सा घर, जो ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि बनता है खुशियों से, जहां रिश्ते उम्र से नहीं विश्वास से बड़े होते हैं, जहां थोड़ा सा सुख सब में बांट दिया जाता है और बड़ा सा दुख मिलकर छोटा कर दिया जाता है। चाहे हम जहां भी जाएं, अपनेपन का एहसास तो हम अपनों में ही पाएं। बातों को तोड़ने की जहां आवश्यकता नहीं, बातों को तोड़ने की जहां आवश्यकता नहीं, पूरी दुनिया में अपना घर जैसा कुछ भी नहीं। जहां हमें मिले जीवन जीने की कला, घर जैसा प्यार का एहसास कहीं और मिलता है भला। घर बस एक एहसास है, एक सुकून भरा एहसास, जहां हमें बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं, बस हमें समझ लिया जाता है। रिश्ते होते हैं बड़े अजीब, कभी शब्दों में उलझते हैं तो कभी मौन में सुलझ जाते हैं, कभी शब्दों में उलझते हैं तो कभी मौन में सुलझ जाते हैं, कभी एक छोटी सी बात दिलों में दूरी कर देती है तो कभी एक छोटी सी मुस्कान वही दूरियां मिटा भी देती है। यही तो घर संसार है, पूर्ण नहीं पर अपना है। यही शिकायतें भी हैं, मन मुटाव भी, पर उनके पीछे एक दूसरे को खो देने का डर भी है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी दौलत यही है, यही घर है, यही संसार है, जहां रिश्ते समय से बड़े होते हैं। शायद इसी को कहते हैं घर संसार, शायद इसी को कहते हैं घर संसार। धन्यवाद।
1: बहनों, हमें आशा है कि श्री देवी जी के इस काव्य पाठ को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। तो चलिए अब यहाँ अपने बातों का रुख थोड़ा गीत संगीत की ओर करते हैं।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

बहनों, चलिए इस गीत के बाद बात करते हैं 19 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में, जिसे उन लोगों को याद करते हुए मनाया जाता है जिन्होंने राहत कर्मियों के रूप में मानवता की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या संकट में फंसे लोगों की मदद करी। अगर इस दिन का इतिहास जाने तो सन 2003 में इसी दिन यानी कि 19 अगस्त को इराक की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर बम से हमला हुआ था, जिसमें 22 मानवीय सहायता कर्मियों की जान चली गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विशेष दिन के रूप में मनाने का फैसला किया। बहनों, बगदाद त्रासदी के बाद अब तक 4,000 से अधिक राहत कर्मियों को निशाना बनाया जा चुका है। कई मृत्यु का शिकार हुए और कितने ही घायल हुए और कई गिरफ्तार या अपहृत हुए, लेकिन वो कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। विश्व भर में फैलती अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपनी सरजमीं से दूर हो जाते हैं। कई महिलाएं उत्पीड़न और अपमान का शिकार हो जाती हैं और कई बच्चों का बचपन उनसे छिन जाता है। ऐसे में ये राहत कर्मी निस्वार्थ भाव से उनके जीवन को राह दिखाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं और अपनी मानवता के भाव को सदा सर्वोपरि रखते हैं। बहनों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहनों, कल ही हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और आने वाली 20 अगस्त को हम मनाने जा रहे हैं सद्भावना दिवस, जिसे राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ये दिन जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सभी लोगों के बीच शांति, सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। बहनों, सद्भावना का अर्थ है अच्छी सोच, प्रेम, भाईचारा और परोपकारी भावना, जो देखा जाए तो हमारे देश की तरक्की की

0: नींव है। जब हम बिना किसी भेदभाव के एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो तरक्की पूरे देश की होती है। इसलिए इस दिवस को मनाने का तरीका यही है कि हम सद्भावना के इस भाव को सदैव अपने मन में रखें और देश प्रेम को सर्वोपरि।
1: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एक सूचना। क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 तथा राष्ट्रीय स्तर पर ₹5,00,000 तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।
0: बहनों, चलिए अब बात करते हैं दूर रात के अंधेरे में चमचमाते हुए उस चांद की, जिस पर कवियों ने कविताएं लिखी, गीतकारों ने कई नगमे। किसी महबूब ने उसमें अपनी महबूबा को देखा, तो किसी बहन ने अपने भाई को, और हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर पहुंचकर नया जीवन खोजने का सपना देखा। वैसे तो चंद्रमा की सतह पर 1969 में मनुष्य अपना पहला कदम रखकर इतिहास बना चुका है, लेकिन भारत ने इतिहास तब रचा जब चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करी। वैसे तो USSR, चाइना, अमेरिका इससे पहले चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की लैंडर रोवर जोड़ी पहली है। और इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की सरकार द्वारा घोषणा की गई। ये दिन उन सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के लिए है जो दिन रात वैज्ञानिक तकनीकों में तरक्की का प्रयास कर रहे हैं और हमारे जीवन को आरामदायक बना रहे हैं। और इस श्रेणी में महिला वैज्ञानिकों का भी नाम शामिल है। अब वो चाहे नंदिनी हरिनाथ हो, अंजू चतुर्वेदी जी हो, कल्पना कलाहस्ती जी हो या फिर ऋतु करिहर हो, ये सब महिलाएं अपने घर को भी संभाल रही हैं और साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं। और ये दिन है उनकी ही तरह और भी बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का। तो चलिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो आगे बढ़े, बढ़ के विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम बढ़ाएं।

तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का घर संसार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। तो अब अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे घर संसार कार्यक्रम मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये

0: बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
2: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर

0: हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। आईएमडी ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम के बारे में कहा जाता है कि तेज हवा के चलते वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 अगस्त तक समुद्र में न जाए। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31:50 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3
1: विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कच्चे धागे फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत दिया है राहत फतेह अली खान ने।

अब सुनिए कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में, बोल समीर के संगीत जतिन ललित का।

लता मंगेशकर और कुमार सानू के स्वरों में अब सुनिए जब प्यार किसी से होता है। फिल्म का गीत रचनाकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के बोलों को संगीत से सजाया है आनंद मिलंद ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर बाद 3 बजे हैं श्रोताओं, और अब सुनिए कार्यक्रम एल्बम टाइम्स।

श्रोताओं, दिलेर मेहंदी के गाए इस एल्बम गीत के साथ ही आज का यह कार्यक्रम एल्बम टाइम्स अब यहीं पर समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से, और इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में समय हुआ है 3:30। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना। इसमें कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी यादों की हल्की सी छाव, लेकिन हर सुबह हमें एक नया मौका देती है फिर से मुस्कुराने का, फिर से सपने देखने का और अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में जीने का। और जब कोई खूबसूरत गीत इस एहसास को आवाज़ दे तो दिल अपने आप कह उठता है, आज फिर जीने की तमन्ना है।

दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब शाम धीरे धीरे उतरती है तो वातावरण में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। कभी ठंडी हवा का झोंका, कभी आसमान पर बदलते रंग और कभी कोई पुराना गीत, ये सब मिलकर शाम को और भी खास बना देता है। और अगर उस शाम के साथ किशोर कुमार की सुरीली आवाज़ हो तो फिर क्या कहने। तो आइए इस खूबसूरत शाम के एहसास को और भी रंगीन बनाते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसमें मस्ती भी है, प्यार भी है और एक मीठी सी शरारत भी।

श्रोताओं, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इतने खास होते हैं कि उनसे दूर होकर भी वे हमेशा हमारे दिल के पास रहते हैं। उनकी बातें, उनकी मुस्कान और उनके साथ बिताए छोटे छोटे पल समय बीत जाने के बाद भी दिल में वैसे ही बसे रहते हैं। ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक नगमा है जो प्यार की उस खूबसूरत भावना को बयां करता है जब कोई हर पल हमारे दिल के पास महसूस होता है। तो आइए यादों की इसी मीठी दुनिया में चलते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रोखरे हमांग इन रे तक लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज़ रमांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अनगी निकोबारे प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन ही इंग हरा ngam ta Eddis Independence Day takut ngarachu wahe ai e aki ken e ngati ai aku ngi kun panam re Andaman and Nicobar Islands ai celebrate Independence Day ai khut ngarachu elne el yengare ngam honorable lieutenant governor ngi Andaman and Nicobar Islands an mahatu ilangam tricolor ne elngam historical Netaji Stadium wahe ureku op nahatu ilen e ngaj ure anga na chu elngam cellular jail nahatu ilangam national flag indrene in e ke ngamene medal hek lg commendation award tamine certificate an ire tak ngam independence day hoi te hek sin hangran ne chung mahavat kare nalak el hoi nekun panam hi चमु मायबंदर द डिक्लीपुर एम वी रानी जंगा नचुट मायबंदर द डिक्लीपुर इब्तसर सीन अलांगो चिंगे इद सट कइरो द लाबह नलक्ञ फिनिश पे जट्टी नच हावन इब्त हेवर सीन अलांगो चिंगे इद सट कइरो द लाबह नरांग डिक्लीपुर सग मायबंदर अनमिन गम चोंग एल तले करन जुसरी विजयपुरम चमु लिटिल अंडमान हेक चोंग एम वी कैम्बल बे चू लिटिल अंडमान

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Depression क्या है? जानिए लक्षणों और इलाज के उपाय इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त है। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। डिप्रेशन किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन का असंतुलित होना, गर्भावस्था और अनुवंशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है, दैट मीन्स हेरिडिटरी। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहना तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियां धीमी होना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो DSM-5 यानी परीक्षण तकनीक के अनुसार

इसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द एक्सेट्रा। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोगी चिकित्सा से मिल सकती है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत जरूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध है। एक साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या मिक्स ट्रीटमेंट। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीज में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। अगर आपके किसी परिचय या आपको डिप्रेशन है तो आप इस तरह उस व्यक्ति और अपनी सहायता कर सकते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें। इस समस्या को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने आप को अकेला न रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले, गपशप करें। खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स न बनाएं। सुबह शाम टहलने जाए। अपने आप को काम में व्यस्त रखें। उदासी भरे गाने न सुने। दिल ही दिल में घुटने के बजाय अपनी बात किसी विशेषज्ञ या फिर साइकोलॉजिस्ट से करें या फिर काउंसलर से करें। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्ते से गुजरे। अगर आप दुखी हैं तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप बहुत खुश हो। सिर्फ एक्टिंग करने में क्या जा रहा दोस्तों, थोड़ी सी एक्टिंग आपके लिए, खुद के लिए भी करिए। सहकर्मियों के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रोता। हंसने पर दुनिया साथ में हंसने को तैयार हो जाती है। सकारात्मक बातें पढ़िए और बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फायदा उठाए। हो सके तो कुछ कोर्स ज्वाइन करें। योग का सहारा ले और प्राणायाम रोज करें। राइट ब्रीथिंग विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। रात में सोने के एक घंटे पहले टीवी बंद कर दे और अपना मोबाइल भी बंद करे। आजकल के डिस्ट्रैक्शन से बचे। हैव अ डीप एंड नाइस स्लीप। डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता है और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। यूं तो डिप्रेशन की रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय यही है कि नकारात्मक विचारों को दूर रखने का प्रयास करें और जितना हो सके सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहे। लेकिन कुछ बिंदु है जो बहुत महत्व रखते हैं। अपने जीवन की हर परिस्थितियों में आपके साथ कुछ लोगों का हमेशा साथ होना चाहिए। कुछ ऐसे फैसले जो डिप्रेशन की वजह बनती है, जैसे नौकरी बदलना, प्रेम करना, विवाह या तलाक लेना। ऐसे फैसले अकेले न करें। हमेशा उन लोगों से राय ले जो सालों से आपके करीब है। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। जितना हो सके डिप्रेशन के बारे में पढ़ें और जानें ताकि आपके मस्तिष्क जागरूक रहे। शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन से बचें। तो दोस्तों, यह थी डिप्रेशन से निजात पाने के तरीके। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी साथियों से शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।

तब तक आप अपने आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

श्रोताओं, अभी आप लम्हे की 12वीं कड़ी का प्रसारण सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रमों का विवरण।

अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे बहारू की शाम कार्यक्रम। तमिल कार्यक्रम का समय होगा शाम 5 बजे। शाम 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। संगीत संगिनी कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे धरती के गीत कार्यक्रम में छोटा नागपुर की लोकगीत। 6:45 पर देशगान। शाम 7:05 पर प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम। 7:30 पर युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। इन सभी कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप प्रीतम सरकार का गीतार वादन सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 11 बजे मौसम की जानकारी के साथ सभा समाप्त होगी। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। लीजिए सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। सवेरे 5:23 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। सवेरे 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभा वंदना। सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जुदाई शीर्षक पर। सवेरे 6:30 रामचरितमानस गान की 333वीं कड़ी का प्रसारण आप सुनेंगे। सवेरे 6:40 पर समाचार वार्ता। वतन के गीत कार्यक्रम का समय होगा 6:45। सवेरे 6:50 पर मौसम की जानकारी, तत्पश्चात गौरव गान। सवेरे 7:15 पर देश रागनी कार्यक्रम। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुनेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 8:30। तराने सुहाने कार्यक्रम का समय होगा सवेरे 9 बजे। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। 10 बजे आप सुनेंगे गीत गाता चल कार्यक्रम। 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1391वीं कड़ी का प्रसारण। एक ही कलाकार कार्यक्रम का समय होगा 11:30। दोपहर 12 बजे आप सुन पाएंगे तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर आप समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिल मिल गाए का आनंद ले पाएंगे। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्मी।

काम। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ सभा की समाप्ति होगी। शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से हमारी दूसरी सभा फिर आरंभ होगी। शाम 4:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम। शाम 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण। शाम 4:45 पर बाहरों की शाम कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। तमिल कार्यक्रम का समय होगा शाम 5 बजे। शाम 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। शाम 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में आप डॉक्टर AKM बेस्ट से ली गई बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा अच्छा उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन। शाम 6:30 पर पॉप मसाला कार्यक्रम। शाम 7:20 पर आप फिल्मी गीत पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे, दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:30। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। रात्रि 10 बजे संदेश आते हैं कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे News@9। 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर मौसम की जानकारी के साथ सभा, हमारी यह सभा यही समाप्त होगी। ये थे हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फरेब फिल्म से। गायक कलाकार है कुणाल और श्रेया घोषाल। इस गीत की बोल तैयार की है साहिद कादरी ने। संगीतकार है अनु मलिक।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अनु मलिक का संगीतबद्ध किया फिदा फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार है उदित नारायण और अलका याग्निक, बोल समीर के हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं गुलजार का लिखा ये गीत। गीतकार है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर। इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर ने।

0: अभी आप बाहरों की शाम कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம். வணக்கம் நேர்களே.

इस गीत की फरमाइश हमें महाराष्ट्र से नरेवाल इंगले ने की थी। आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। ये गीत सुनना चाहते हैं एमपी से बहादुर शाह।

रे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ।

श्रोताओं, कोलकाता से नागेश कुमार झा सुनना चाहते हैं असली नकली फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार है लता मंगेशकर। इस गीत की बोल तैयार की है साधना।

श्रोताओं, कोलकाता से नागेश कुमार झा सुनना चाहते हैं असली नकली फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार है लता मंगेशकर। इस गीत की बोल तैयार की है साधना ने। संगीतकार है शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, महाराष्ट्र से धनंजय सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का ये गीत। गीतकार है मनोहर उदास। इस गीत की धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने, बोल अमिताभ बच्चन के हैं।

श्रोताओं, मध्य प्रदेश नीपा नगर से सुदर्शन शाह अपने मित्रों के साथ सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार है किशोर कुमार, बोल आनंद बख्शी के हैं।

श्रोताओं, अभी आप बहारों की शाम संगीत संगनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है धरती के गीत कार्यक्रम में छोटा नागपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप देश गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

श्रोताओ, अब से कुछ देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ।

इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचारों का प्रसारण होगा, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद यानी 7:05 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ।

0: जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वीप समूह में डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था ने साइबर कुश्ती हैकाथॉन का शुभारंभ किया और पर्यटन निदेशालय में रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पर्यटन पहल के तहत 20 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के प्रश्न पत्रों में संभावित त्रुटियों से जुड़ी शिकायतों की जाँच के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के बारे में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों से केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वीप समूह में ग्राहक केंद्रित पहलों और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए बीएसएनएल दूर दराज और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी विश्वसनीय एवं उच्च गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। देशव्यापी स्वतंत्रता दिवस पहलों के तहत बीएसएनएल ने नए मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए ₹1 का फ्रीडम 2.0 ऑफर शुरू किया है, जिसमें प्रतिदिन 1 GB डेटा, प्रतिदिन 100 SMS, असीमित वॉइस कॉल और 24 दिनों की वैधता दी जा रही है। बीएसएनएल ने ₹1,111 प्रतिमाह का फाइबर फ्रीडम प्लान भी शुरू किया है। दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां बीएसएनएल ग्लोबल सैटेलाइट फोन सेवाएँ भी उपलब्ध करा रहा है। द्वीप समूह में बीएसएनएल ने संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत उच्च गति की फाइबर कनेक्टिविटी के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 70 ग्राम पंचायतों को कवर करता है और इसे 7 जनजातीय परिषदों तक विस्तारित करने की योजना है। प्रधानमंत्री की 4G सेवाओं के विस्तार की पहल के तहत बीएसएनएल ने 85 नए 4G टावर स्थापित किए हैं और 70 मौजूदा साइटों को 4G में उन्नत किया है। कमोटा से तरेसा द्वीप को जोड़ने वाली 48 किलोमीटर से अधिक लंबी ओवरसी अनलाइसेंस्ड बैंड रेडियो लिंक चालू की गई है। यह लिंक जटिल समुद्री बैकहॉल संबंधी चुनौतियों का समाधान करती है और क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के मुख्य केंद्र के रूप में

करती है। पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार यूबीआर लिंक के माध्यम से बंगाली गांव स्थित मोबाइल साइट को सक्रिय किया गया है, जबकि बम्बुका और कन्हाई में दो अतिरिक्त दूरस्थ साइटों को भी शीघ्र ही इससे जोड़ने की योजना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, साइबर कुश्ती हैकाथॉन और पर्यटन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आंकलन में

उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आंकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल शुरू हुआ पंजीकरण 10 सितंबर तक जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इसमें भागीदारी निःशुल्क है और 3 सदस्यीय टीमों में छात्र और स्वतंत्र शोधकर्ता भाग ले सकते हैं। विजेता टीम को साइबर केसरी 2026 की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पारंपरिक गदा भेंट की जाएगी। उप विजेताओं को रुस्तम और पहलवान की उपाधि से नवाजा जाएगा। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में मात्र 13 दिनों का था। इसके बाद उन्होंने 1998 से 1999 तक करीब 11 महीने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1999 से 2004 तक उन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। पर्यटन निदेशालय ने रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस आरएएमपी पर्यटन पहल 2026-27 के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक एमएसएमई होमस्टे मालिकों और व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए द्वीप समूह में होमस्टे कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और एक्सपोजर कार्यक्रम के अलावा एक्स्ट्रो टूरिज्म उपकरण खरीद के लिए एमएसएमई सहायता के माध्यम से द्वीप समूह में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों की सूची और संपूर्ण दिशा निर्देश ई राजपत्र पोर्टल पर उपलब्ध है। इस संबंध में लाभार्थियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग एक पंजीकरण एवं सुविधा शिविर आयोजित करेगा। सहमति पत्र निर्धारित प्रारूप में 20 अगस्त को शाम 5 बजे तक निदेशालय के योजना अनुभाग में जमा किए जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त पड़ी कुछ सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी 19 अगस्त को सुबह 9 बजे से अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विभागों में संपर्क कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले आवेदन नहीं कर सके और जिन्होंने कंपार्टमेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी सीधा प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न 9 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन 17 अगस्त तक ऑफलाइन माध्यम से संबंधित विभागों में जमा किए जा सकते हैं। अस्थायी वरीयता सूची 19 अगस्त को जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियां 20 अगस्त तक, अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन 21 अगस्त, परामर्श 22 अगस्त को और नियमित कक्षाएं 24 अगस्त से शुरू होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वीप समूह में डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती हैकाथॉन का शुभारंभ किया और पर्यटन निदेशालय में रेजिंग एंड एक्सप्लोरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पर्यटन पहल के तहत 20 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
6: जन पॉलिसी जन कैयल।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
7: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
8: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
9: आगे सैलरी?
10: हाँ।
9: नए झुमके? ना, पहले बचत,
10: पहले झुमके।
9: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
10: लेकिन झुमकों का क्या?
9: जाते हो कि
10: हाँ?
9: लगाओ इंजेक्शन।
11: आरबीआई कहता है,
12: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
13: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले लीजिए सुनिए मौसम का हाल। मौसम निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये है मौसम का हाल।

जलियानों का यात्रा कार्यक्रम एमवी रानीचंगा मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सोमवार 17 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान की वापसी कल ही डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर मंगलवार 18 अगस्त को रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलियान की वापसी मंगलवार दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर बृहस्पतिवार 20 तारीख को श्री विजयपुरम से जाएगा। जलियान की वापसी 23 अगस्त को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बोका लिटिल अंडमान की यात्रा पर दिनांक 23 अगस्त को श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान की वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से चलकर श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी कालीघाट मंगलवार 18 अगस्त को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान से होते हुए कारनिकोबार की यात्रा पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान की वापसी अगले दिन 19 अगस्त को कारनिकोबार से चलकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा कारनिकोबार की यात्रा पर दिनांक 21 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान की वापसी 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे कारनिकोबार से चलकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान कारनिकोबार चावरा तेरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर 23 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे कैम्बल बे से चलकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जन सूचनाएं गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 112-03192-232100। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, अभी आप उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। बोल देव कोहली की थी, संगीतकार थे अनु मलिक।

श्रोताओ, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के महान राजनेता, कवि, वक्ता और राष्ट्रभक्त थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सरलता, दूरदर्शिता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वे सभी के प्रिय थे। दोस्तों, 16 अगस्त 2018 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता है। उन्होंने भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे हमेशा लोकतंत्र, शांति और राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे। देश के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा सदैव याद की जाएगी। दोस्तों, आज रविवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: दोस्तों, आप भी हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325402325558। हमारा स्टडी कोड है 031192। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल।
1: हेलो
0: हेलो म्यूजिक लवर।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी रमेश जी, कैसे हैं आप?
1: हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया। रिमझिम बारिश हो रही है, आनंद ले रहे हैं और काम, बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: जी हमें खुशी हुई आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो बताइए, इस मौसम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: करण अर्जुन का है, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से।
0: जी तो बताइए, आज का दिन कैसा गया आपका?
1: आज बढ़िया गया, आज का दिन बढ़िया, मतलब पानी गिरा थोड़ा, मतलब धूप भी रहा, वो बढ़िया गया, अच्छे दिन गया आज।
0: जी तो वैसे आप करते क्या हैं?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ मैम, दुकान पे ही हूँ, मतलब कपड़े सिलता हूँ।
0: जी जी तो बताइए, ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आपको
0: जी,
1: और हमारे मित्र हैं असम से, भाई को मुंडा है, विमल भस्माकारी, अमल भस्माकारी, रमेश पात्रे जी है, गोल्डी जी है, रिक्कू विले मेहता है, पुरुषोत्तम कुमार है, तनुश्री बिटिया मराठ से, गंगाधर सावनकर, अविनाश तेली है, राकेश शिमला से, आशुतोष जी है, संगीता जी, पूनम जी है कानपुर से, भगवान सिंह परमार, गजराज लोधी, केसी सिंह राजपूत, मांगीलाल चंदेर, प्रेम सिंह सिसोदिया
0: जी जी
1: और शिव लोहार विदिशा से।
0: जी तो चलिए, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो म्यूज़िक लवर
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: जी, नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: जी, हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो सबसे पहले बता दीजिए कौन सा गीत सुना चाहेंगे आज?
1: क्रिश फिल्म का सुना दीजिएगा, आओ सुनाऊँ प्यार की एक कहानी।
0: जी, तो
1: जी
0: बताइए आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी काफ़ी अच्छा मौसम है। 3-4 दिन से पहले अच्छी बारिश हुई है यहाँ पर,
0: जी
1: और अभी मतलब अच्छा मौसम है और हर तरफ हरियाली है। सोयाबीन की फसल लगाई है हमने,
0: जी
1: जो अभी 1 महीने और 20 दिन की हो गई है। हाँ
0: जी
1: जी,
0: तो जी तो बताइए ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: भगवान सिंह परमार है, आशुतोष अमीना संगीता जी है त्रिपुरा से, और सुनील जा भोपाल से।
0: हेलो हेलो दोस्तों, किसी कारणवश हमारा श्रोता से संपर्क टूट चुका है। जब तक हम दूसरे श्रोता से जुड़ते हैं, चलिए सुनवाते हैं ये गीत।

0: सही हूँ। और गाने के बोले चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। जी,
1: जो बहुत ही प्यारा गीत है। और ये गीत आज के दिन
0: पहले
1: किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगी?
0: तो आपको डेडिकेट रहेगा, फिर मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा। भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी शिमला से, अविनाश जी है गंगाधर सावनकर जी है, रमेश प्रजापति जी है आसाम से, भाई है अमोल भट्टाचार्य, और लाइव सुन रहे हो सभी श्रोताओं को।
1: जी, तो चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: ओके, बाय बाय।

0: हेलो म्यूजिक लवर।
1: हेलो,
0: हेलो नमस्कार, कैसी है? आपका नाम?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैम। आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुना चाहेंगी?
1: पहले तो मैम मैं नाम बताती हूँ। मैं ग्राम
0: जी
1: पुनौरा जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: जी तनुश्री, आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत खुशी हुई। तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुना चाहेंगी?

0: हेलो म्यूजिक लवर।
1: हेलो,
0: हेलो नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं नाम बिंदिया, मैं
0: जी
1: ग्राम बिलाउद्दीन।
0: जी बिल्कुल भी। कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ। मैम, आप कैसे हो?
0: जी हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: प्रेम रतन धन पायो
0: जी
1: टाइटल
0: जी तो
1: का टाइटल सॉन्ग।
0: जी जी तो ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगी आप?
1: मेरे पापा के साथ और मेरे भाई बहन के साथ।
0: जी तो हमें आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

8 बजे है। अब आरंभ होता है चित्रपट संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लगा चुनरी में दाग फिल्म से। गायक कलाकार है शुभ मुद्गिल और मीता वशिष्ठ। बोल स्वानंद किरकिरे के हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री पूज्यपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।

0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
1: माझी पॉलिसी माझा हाती।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
2: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
3: यन पॉलिसी यन कयल।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ,
7: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना,
6: पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया, जाओ भाई।
8: RBI कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: श्रोताओ, आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में जहाँ जाएगा हमें पाएगा फिल्म का ये गीत। गीतकार है आदेश श्रीवास्तव और स्नेहा पंत, बोल नुसरत बदर के हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं देव कोहली का लिखा हमको तुमसे प्यार है फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार है उदित नारायण और अलका याग्निक। इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, अभी आप अदनान सामी और शान की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। बोल समीर के थे। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अदनान सामी ने।

श्रोताओं, अभी आप चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डिप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है।

0: सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूर संचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषय में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50-60 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: श्रोताओं लीजिए सुनिए गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप देश का अंत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचारों का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे।

0: निभेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
1: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद N मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर

0: पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत

0: नाटकों के त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
1: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंग

का शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राजपुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता पर काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि,
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
4: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। मां दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
0: पुत्री दुर्गावती।
5: महारानी, महारानी, प्रणाम। राजमाता,
0: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
5: क्षमा चाहता हूं राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
5: जी राजमाता।
0: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है, उसे बंदी बना लीजिए।
5: जो आज्ञा राजमाता।

और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वह 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था।

0: जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: बालक बाबूराजा होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान, जिले इलाही, जिले सुभानी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं।
2: जिले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता की चर्चे हैं।
3: बहादुरी, महानता, बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
2: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
3: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
2: बेहतर जहां पना,
3: लेकिन लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा हैं, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
2: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
3: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
4: जहांपना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
3: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
2: जहांपना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
3: ओ, तब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहां के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
4: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
5: जहां पना का इकबाल बुलंद रहे।
3: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
5: जहां पना, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मात दी है।
3: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
5: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं, वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
3: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
2: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
5: जहांपना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं, और असलियत यह है कि वो मुगल सल्तनत को भी हत्या

0: जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भला वो किसके दम पर?
0: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहां पना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहां पना।
1: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
2: आलीजा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
1: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें।
1: और इस थाल में यह तोहफा क्या है?
2: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
2: जो हुक्म महारानी साहिब है।
1: जलालुद्दीन की ये जुर्रत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
3: वो ऐसा ही करता है महारानी। वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
3: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
2: जो हुक्म।
3: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
4: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
4: परंतु सोने का

0: हाँ ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
1: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
2: मैं जाऊंगा यदि महारानी उचित समझें।
0: उचित है, आखिर उस अहंकारी को पिंजना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
2: जो होगा महारानी।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं,

0: बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
1: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने 1000 सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के 1000 सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान पूरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
2: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
0: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
2: जी महारानी।
0: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आक्रमण करो!
3: दुर्गावती का हाथी बहुत ऊपर पहाड़ी पर है। कुछ कुशल तीरंदाजों को ऊंचाई पर भेजो और नीचे से गोलाबारी जारी रखो।
4: जो हुक्म हुजूर। तीरंदाजों ऊपर बढ़ो।
0: हिम्मत मत हारना मेरे वीर सैनिकों। कुछ तीरंदाज ऊपर आ गए हैं, उन पर निशाना साधो।
5: सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ। जाओ।
0: नहीं, मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
4: नहीं महारानी,
0: इस जलालुद्दीन को तो पता चले कि किस सामना हुआ था उसका।
4: महारानी, काफी खून बह गया है। संभालिए अपने आप को महारानी।
5: महारानी, महारानी,
0: कौन?
5: रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
0: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। सामने देखिए, वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए, इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। मुझे वीर गति दे दीजिए।
5: नहीं नहीं महारानी, नहीं नहीं, ये अधर्म, ये दास अपने हाथों से

0: कभी नहीं कर सकता महाराज, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं। चलिए।
1: क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती है।
0: महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए। अरे महारानी,
1: आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा सा अंश ही है। हे मातृभूमि, हे मेरी गढ़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोते।
0: महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती।
2: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
3: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से

0: प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के सात चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely travelled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the seven chakras of our body.
0: आज रात रितम सरकार के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ओशित जाना।
1: Tonight, Ritam Sarkar is accompanied on the tabla by Oshit Jana.
0: गिटार वादन के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप राग मालकोंस के साथ करेंगे। आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: Ritam Sarkar begins his guitar recital with rag Malkos. With alap, jor and jhala, the composition is set to vilambit jhaptal followed by drut tintal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Malkos in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag Megh. It begins with an alap and the composition is set to Gath in Rupak Tal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग मेघ। रितम सरकार कंक्लूड्स हिज गिटार रिसाइटल इन राग किरवानी। द कंपोजिशन इज सेट टू कहरवा ताल।

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar. He was accompanied on the tabla by Oshit Jana. And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: श्रोताओं अब रुख करते हैं मौसम की हाल की ओर। मौसम निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 11 बजे है। हमारी आज की दूसरी सभा अब यही समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28:35 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: अब सुनिए आज का अनमोल विचार।
1: कुसंगति वो अंधेरा है जो चरित्र की रोशनी को धीरे धीरे बुझा देता है। इसलिए हमेशा ऐसी संगति चुने जो आपको ऊंचा उठाए ना कि गिराए।